जैसा करै कहावै तैसा, ऐसी बनी जरूरत। होवै लिंग चिंग न होवै, ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सोफल पाए, ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है, अमृत रस फलिया। जिस प्राप्त सो लहै, गुरसबदी मिलिया। सतगुर कै पाणै जो चलै, हर सेती रलिया। जम काल जोहे न सकई, कर चानन बलिया। नानक बख्श में लाया न फिर गर्भ ना गलिया। श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ, ज्ञान ध्यान इशनान। दया देवता खिमा जप माली, ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए। पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा, नौमी नेम सच जे करै, काम क्रोध तृष्णा उचरै। दसवीं दसे द्वार जे ठाकै, एकादशी एक कर जाणै। द्वादशी पंच वसगत कर राखै, तौ नानक मन मानै। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजै। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया। कर कर हेत वधाए दे, पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र नाम विस है, बहुप्रीत लगाया। वेखद्या ही माया तुहे गई, पछतै पछताया। जम दर बदे मारी है, नानक हर पाया। श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावै गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कै कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कै मूल न लगी है पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए, मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए, करी पागसाल सोच पवित्रा हुन लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए, जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सवाय ओट गुरपूरे तुर मस्तक लेख लिखाए, जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवां खीरा धार, बारक जब होता बिन खीरा रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै, माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी, नव निध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना, नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवां सगल विधि जो रिया हर करिया, तजो सगलां देसा कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे, गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया, मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभु।

आनंद मंगल रस गावनी निकी रहाओ। तुनत ललत गुनग अनक भांत बहुबिद रूप दिखावनी निकी। गिर तर थल जल पवन भरपुर कट कट लालन छावनी निकी। साध संग रामैया रस पायो नानक जाकै पावनी निकी। मलार महला पंजवा गुरप्रीत प्यारे चरण कमल हरे दे अंतर तारे। रहाओ दर्श सफल्यो दर्श पेख्यो गए किल बिख गए मन निर्मल उजियारे। बिसम बिसमै बिसम पई अड़ग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही भगत टेक तुहारे जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवा बरस सरस आग्या होहे आनंद सगल भाग। रहाओ संत संगे मन पर फड़ै मिल मेघ तर सुहाग। कहन कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोह मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवा गुण गोपाल गाओ नीत राम नाम तार चीत। रहाओ छोड़ मान तज गुमान मिल साधुआ कै संग। हर सिमर एक रंग मिट जाहे दोख मीत। पार ब्रह्म भय दयाल बिनस गए बिखै जंजाल। साज जना कै चरण लाग नानक गावे गोविंद नीत। मलार महला पंजवा कान गर्जत गोविंद रूप गुण गावत सुख चैन। रहाओ हर चरण सरन तरन सागर तुन अनहता रस बैन। पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन। हर दर्श प्रेम जन नानक कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवा हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। रहाओ प्राण नाथा नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ गम पूर्ण मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदियां कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहै बिन पिर नींद न पाई। सूर चरै प्रयो देखै नैनी निम निम लागै पाई। फिर भावै प्रेम सिखाई तिस बिन कड़ी नहीं जग जीवा ऐसी प्यास तसाई। रहाओ सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सह सुभाई। प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरै बिलप करे बिल लाई। कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह न सकै पल जन बिन मरण जीवन तिस्ताई। तन वांडी पिर देश निवासी सच्चे गुरपै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रभृदय निवासी भगत रति हर खाई। प्रयो प्रयो करै सब ही जेती गुर पावै प्रयो पाई। प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेर मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई घट घट रहा समाई। गुर प्रसाद कर ही प्रगासिया सहजे सह समाई। अपना काज सवारो आपे सुखदाते गोसाई। गुर प्रसाद कर ही पिरपाया तौ नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही। अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच ढर पाही। इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिनस्त बार न लागे बवरे। हम मैं गर्भ खपै जग ऐसा। रहाओ जय जगदीश प्रभु रखवारे राखै परखै सोई। जेती है तेती तुझ ही ते तुम सर्यवर ना कोई।
जियो पाए जुगत हथ कीनी आपे गुरमुख अंजन अमर अनाथ सर्ब सिर मोरा काल बेकाल परम पै खंजन। कागद कोट एहो जग है बपरो रंगन चिहन चतराई नानी सी बूंद पवन पत खोवे जन्म रह खिनताई। नदी उपकंठ जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन डसे दूजा मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी बिखिया गुरमत जारी मन तन हेम पय सच पाया हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचै तू सर्ब जिया दयाला तुमरी शरण परे पत रखो साच मिलै गोपाला। बांदी तंद अंध नहीं सूजै बदक कर्म कमावै सतगुर मिलै ता सूजस बूजस सच मन ज्ञान समावै। निर्गुण देहे साच बिन साची निर्गुण देहे साच बिन काची मैं पूछो गुरे अपना नानक सो प्रभ प्रभु दिखावै बिन साचे जग सुपना। मलार महला पहला चात्र कमीन जल ही ते सुख पावै सारंग शब्द सुहाई। रैन बबीहा बोल्यो मेरी माई रहाओ प्रेस्यों प्रीत ना उल्टे कबहू जोते पावे साई। नींद गई हम मैं तन थाकी सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा नाम सुभाई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्या सिरजाई। प्रे बिन सिंगार करी तेता तन तापै कापरे अंग ना सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सका बिन मिले नींद ना पाई। पिर नजीक ना बूझै बपड़ी सतगुर दिया देखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुते मन मानिया कीमत कहन ना जाई। बलार महला पहला अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली उंडी

तिन पौ सागर तरना, पौड़ी अगमा गोचर तू धनी सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंग ते को देवनहार, जिनी सेव्या तिनी सुख पाया गुरमती विचार, एक ना नो तुद एवै पहमदा माया नाल प्यार, गुर कै शब्द पसलाही है अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत ना हो वही विण सतगुर ना लगे प्यार, तू प्रभ सब तुद सेवंदे एक ढाडी करे पुकार, देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार, श्लोक महला पहला, राती काल कटे दिन काल, छिजै काया होए पराल, वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल, पुल्या चुक गया तबताल, अंधा चख चख पया चेर, पिछे रोवै लियावै फेर, बिन बूझे के सूझे नाही, मोया रोहे रोंदे मर जाही, नान खसमै वै भावै, सही मुए जिन चित ना आवै, महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई, मुआ वैरवादी वन गया रूप विनसिया, दुखी देह रली कित्थों आया कह गया, केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्लां गोईया कीता चौरली, नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी, अमृत नाम सदा सुखदाता अंते हुए सखाई, बाजगुरु जगत बौराना नावे सार ना पाई, सतगुर सेवै से प्रवान जिन ज्योति ज्योत मिलाई, सो साहेब सो सेवक तेहा जिस भाणा मन वसाई, आपणे भाणे कहो किन सुख पाया अंधा अंध कमाई, बिख्या कदे ही रजै नाही मूर्ख भुख न जाई, दूजै सब को लग विगुता बिन सतगुर बूझ ना पाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिसनो कृपा करे रजाई, श्लोक महला पहला, सर्म धर्म दोए नानका जेतन पल्ले पाए, सो तन मित्र ना कांडिया, जित सिर चोटां खाए, जिनकै पल्लै धन वसै तिनका नौ फकीर, जिनकै हृदय तू वसै ते नर गुणी गहीर, महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है जाए ता लगै दुख, नानक सच्चे नाम बिन किसै ना लथी भुख, रूपी भुख ना उतरै जां देखां ता भुख, जे तेरा शरीर के तेते लगै दुख, महला पहला, अंधी कमी अंध मन मन अंधे तन अंध, चिकड़ लाया क्या थी है जां टुटे पत्थर बंद, बंद टुटा बेड़ी नहीं ना तुलहा ना हाथ, नानक सच्चे ना

हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल, जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, हौं बलबले हौं बलबले, जन नानक हर जप पई, निहाल निहाल निहाल, कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचै लख बीस, जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ, हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे जप जापो जगदीश, तुमरे जन राम जप है ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुम जीस, हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस, जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस, कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम, सतसंगत मिल पज राम, बड हो पाग मथाम रहाओ, जित ग्रह मंदर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद, पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम, उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे, हरे पज राम राम राम, सब सिष्ट तार हर तुम कृपाल करता, सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति, पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा, सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट, पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ, खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट, कर पेख ना पाईऐ हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ, सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट, तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले, हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे, जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट, कानड़ा महला चौथा, जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो, मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ, बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी, मिल सत गुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पए कंचन, त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो, ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे, साध साध संगति, गुर सतगुरु गुर साधो, चार बर्ण चार आश्रम है, कोई मिले गुरु गुर नानक, सो आप तरे कुर सगल तरा दो, कानड़ा महला चौथा, हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान, मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ, तेरे जन त्यावे एक मन एक चित, ते साधु सुख पावे, पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया, मिल साधु साजना गुर सतगुरु भगवान, जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावे, ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान, तिन सेवा हम लाए हरे, हम लाए हरे, जन नान

स्वामी ने रो पेखत सुंत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखै दल संतन तुमरै गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठाकरो सरन तुम्हारी आहयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सहि समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप तीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मनै सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभुदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रपरसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करनन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध घोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहं मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाह गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखैरा स्यों आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराद गुर सतगुर चरनी लाग हर पाव मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविद खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब कट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदारण नाम प्रे तेरे नवनिध नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दर्शे रह सो पावे जिस लिखत लले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांछो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोरै
किछ संग ना चालै लाख करोरै, प्रभ जी को नाम अंत पकरोरै, मनसा मान एक।

गुरमुख एको एक पछाता, गुरमुख होए लखावै गो। गुरमुख जाय मिले निज महली, अनहद शब्द बजावै गो। जी जंत सब सिष्ट्यो पाई, गुरमुख शोभा पावै गो। बिन गुर भेटे को महल ना पावै, आए जाए दुख पावै गो। अनेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम, कर कृपा गुरु मिलावै गो। सतगुर मिलत महा सुख पाया, मत मलीन बिकसावै गो। हर हर कृपा करो जग जीवन, मैं सरदा नाम लगावै गो। नानक गुरु गुरु है सतगुर, मैं सतगुर शरण मिलावै गो। कानड़ा महला चौथा, मन गुरमत चाल चलावै गो। ज्यो मैंगल मस्त दीजै तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावै गो। रहाओ चल तो चलै चलै दै दै दिस, गुर राखै हर लिव लावै गो। सतगुर शब्द देर दे अंतर, मुख अमृत नाम चुआवै गो। बिसियर बिसु परे है पूर्ण, गुर गरड़ शब्द मुख पावै गो। माया पयंग तिसने नयावै, बिख चार चार लिव लावै गो। स्वान लोभ नगर मैं सबला, गुर खिन मैं मार कढ़ावै गो। सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगरी हर गुण गावै गो। पंकज मोह निगरत है प्राणी, गुर निगरत काट कढ़ावै गो। त्राहे त्राहे सरन जन आए, गुर आथी देख नगलावै गो। सुपनंतर संस

कर कृपा मिले परमानंदा प्रमिले स्वामी सुखैगामी इच्छा इच्छ मन की पुनिया बजी बधाई सहजे समाई बहुत दुख न रुनिया ले कंठ लाए सुख दे कहाए

जानो हम बिरथे कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभु का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो कोई मिले प्रभु मिल थे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभु तुमरे, जन नानक के प्रभु समरथ थे, कल्याण महला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमें मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागण हारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

ज्यों भावै त्यों राखो मेरे स्वामी, एह तेरी वड्याई रहाओ, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन की करें प्रतपाल, आप कृपा कर रखो हर जियो, पोहे ना सके जमकाल, तेरी सरनाई सच्ची हर जियो, ना यो कटे ना जाए, जो हर छोड़ दूजे पाए लागे, ओ जमे ते मर जाए, जो तेरी सरनाई हर जियो, तिन्ना दुख भूख किश नाहे, नानक नाम सलाहे सदा तू, सच्चे शब्द समाहे। प्रभाती महला तीजा, गुरमुख हर जियो सदा ते आवो, जब लग जी प्राण, गुर शब्दी मन निर्मल होवा, चूका मन अवमान, सफल जन्म तिस प्राणी केरा, हर कै नाम समान, मेरे मन गुर की सिख सुनी जय, हर का नाम सदा सुखदाता, सहजे हरस की जय। रहाओ मूल पछाण तिन निज कर वासा, सहजे ही सुख होई, गुर कै शब्द कमल पर गासिया, हो मैं दुर्मत खोई, सब ना मैं एको सच वरत, विरला बुझै कोई, गुरमति मन निर्मल होवा, अमृत तत्व खानै, हर का नाम सदा मन वसिया, विच मन ही मन मानै, सद बलिहारी गुर अपने विटों, जित आत्म राम पछानै, मानस जन्म सतगुरु ना सेवया, बिरथा जन्म गवाया, नजर करे ता सतगुर मेले, सहजे सही समाया, नानक नाम मिले वड्याई, पूरे भगत आया, प्रभाती महला तीजा, आपे पांत बनाए बहुरंगी, सिष्टियों पाए प्रभ खेल किया, कर कर वेखै करे कराए, सर्व जियां नो रिजक दिया, कली काल में रवे आराम, कड़कड़ पूर रहा प्रभ एको, गुरमुख प्रगट हर हर नाम, रहाओ गुप्ता नाम वरतै विच कल युग, कटकट हर भरपूर रहया, नाम रतन तिन्हा हिरदै प्रगटिया, जो गुर सरनाई पज पया, इंद्री पंच पंचे वसे आणै, खिमा संतोख गुरमत पावै, सो तन तन हर जन वड पूरा, जो पै बै राग हर गुण गावै, गुर ते मोह फेरे जे कोई, गुर का कहया ना चित तरै, कार्याचार बहु संपो संचय, जो किश करै सो नरक परै, एको शब्द एको प्रभ वरतै, सब एक स्ते उत्पत चलै, नानक गुरमुख मेल मिलाए, गुरमुख हर हर जाय रलै, प्रभाती महला तीजा, मेरे मन गुर अपना सा लाहे, पूरा भाग हुआ मुख मस्तक, सदा हर के गुण गाहे, रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे, कोट मदे कोई विर ला ले, जिसन अपनी नजर करे, गुर के चरण मन माहे वसाए, दुख नेरा अंदरों जाए, आपे साचा ले मिलाए, गुर की बाणी सो लाए प्यार, व्यथ उथे हो आधार, आपे देवै सृजनहार, सच्चा मनाए अपना पाणा, सोई भगत सुगड सुजाणा, नानक तिसकै सतकुरबाणा, प्रभाती महला चौथा, विभास एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रसक रसक गुण गावै गुरमत, लिव उनमन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम विटों कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हरि उतमरे द्यंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान, रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई, मिल हर हर नाम वखान, कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान, वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक कहो गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान, प्रभाती महला चौथा, उगवै सूर गुरमुख हर बोलै,
सब रहन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करह प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारो हम बाल, रहाओ साकत कहो दिन रहने अंधारी, मोहे फाथे माया जाल, खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो, रिन बांधे बहु बिदबाल, सत संगत मिल मत बुद्ध पाई, हो छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल, हम बारक गुर अगम गोसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख पाओ जल डुब दे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती महला चौथा। एक खिन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसक रसीक, गावत सुनत दो पहे मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक, मेरा मन हर हर नाम, मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक, गुरमत नाम शीतल जल पाया, गुरमुख नाम शीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक, रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिन्ना मस्तक उजल टीक, हर जन सोभा सब जग उपर, जो विच उड़वा ससकीक, जिन हर हृदय नाम न वसयो, तिन सब कारज फीक, जैसे सिंगार करे देह मानुख, नाम बिना निकटे नक कीक, कट कट रमैया रमत राम राय, सब वरतै समयीक, जन नानक कव हर कृपा तारी, गुर बचन ते आयो करी मीक, प्रभाती महला चौथा। आगम दयाल कृपा प्रभ तारी, मुख हर हर नाम कहे, पतत पावन हर नाम ते आयो, सब किल विख पाप लहे, जप मन राम नाम रव रहे, दीन दयाल दुख पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे, रहाओ काया नगर नगर हर बसयो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो, कर मंदिर हर प्रभ लहे, जो नर परम परम उदयाने, ते सागत मूड मोहे, ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना, प्रम प्रमयो चार गहे, तो वड अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रभ लहे, जन नानक कहो गुर हाथ सिर तरयो, हर राम नाम रव रहे, प्रभाती महला चौथा। मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सतगुर बचन सुखाने ही अर, हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मन पज राम नाम हर निमखफा, हर हर दान दियो गुरपूर, हर नामा मन तन बसफा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जप सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पहे सुहेले, मुख उज्जल गुरमुख तरफा, अनपव हर हर हर लिव लागी, हर उर तारयो गुरनिमुखफा, कोट कोट के दोख सब जन के, हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जान तुम ही ते जाने, प्रभ जान्यो जनते मुखफा, हर हर आप तरयो हर जन में, जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप बा, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुब दे बह दे कडबा, जप मन राम नाम अर्धम्बा, उपजंपो पाए न पाइए कतहूं, गुरपूरे हर प्रभ लभ, रहाओ राम नाम रस राम रसायण, रस पिया गुरमत रसबा, लोह मनूर कंचन मिल संगत, हर उर तारियो गुर हरबा, हम मैं बिखिया नित लोभ लुभाने, पुत कलत मोहे लुभबा, तिन पग संतन सेवे कभू, ते मनमुख पूंबर परबा,
तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो, हम परे हार तुम शरण बा, ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी, जन नानक दास तुम नवाशक एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जप मानो हर हर नाम निधान, हर दरगह पावे मान, जिन जपया ते पार प्राण रहाओ, सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान, सुन मानो हर कीर्त अड़सठ मजान, सुन मन गुरमुख पावे मान, जप मन परमेश्वर प्रदान, खिन खोवे पाप कोटान, मिल नानक हर भगवान, प्रभाती महला पंजवा विभास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मन हर किया तन सब साजिया, पंच तत् रजोत निवाजिया, सहजा तरत बर्तन कौ पानी, निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी, मन सतगुर सेव होए परम गते, हर सोग ते रह निरारा, ता तू पावे प्राण पते रहाओ, कापड़ भोग रस अनक पुंचाए, मात पिता कुटुंब सगल बनाए, रिजक समाहे जल थन मीत, सो हर सेवो नीता नीत, तहां सखाई जै कोई ना होवै, कोट अपराध एक खिन में तोवै, दात करे नहीं पछोतावै, एका बख्श फिर बहुर ना बुलावै, किरत संजोगी पाया पाल, साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिले आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहो मरार, प्रभाती महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै पंडार, गुण गावे प्रभ दर्श प्यार, तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई, काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ, जो जन दाता प्रभ कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग, जिस रस आया सोई जन, पेख पेख मन में हैरान, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई निश्चलिया वै न जाए, अंदर प्रभ के हर गुण गाए, ता को करो सगल नमस्कार, जा कै मन पूर्ण निरंकार, कर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उदरै जन की सेवा, प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जा कै सिमरन कलमल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे, सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कै सदा बल जाइय, हर सिमरन जिस गुर ते पाइय, बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरै सवारिया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया, महामुगते किया ज्ञानी, गुर पूरे की कथ कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वड्डे पाग पाइए हर सेव, प्रभाती महला पंजवा, सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया, कर कृपा अपनी सेवा लाए, सगला दुर्त मिटाया, हम बारक शरण प्रभ दयाल, अवगण काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुर गोपाल रहाओ, ताप पाप बिनसे खिन पीतर, पय कृपाल गुसाई, सास सास पार ब्रह्म आराधी, अपने सतगुर कै बल जाई, अगमै गोचर बेअंत स्वामी, ता का अंत ना पाईऐ, लाहा खाट हुई तनवंता, अपना प्रभु त्याई, आठ पहर पार ब्रह्म त्याई, सदा सदा गुण गाया, कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ, पार ब्रह्म गुर पाया, प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किलबिक सब नासे, सच नाम गुरदीनी रासे, प्रभ की दरगह सोभावंते, सेवक सेव सदा सोहंते, हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोख सब बिनसै, अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ,

सर्वसिद्ध कल्याण पूर्ण होए सगल काम। हर को नाम जपिए नीत, काम क्रोध अहंकार बिरसै लगे कै प्रीत रहाओ। नाम लागे दुख पागे शरण पालन जोग, सदगुर पेटे जमना तेटे जिस तुर होवे संजोग। रैण दिन सत्याय हर हर तजो मन के परम, साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म। जन्म जन्म बिखाद बिन से राख लीने आप, मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवा विभास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम राम राम राम जाप, कल कलेस लो मोह बिरस जाए अहंताप रहाओ। आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित्र जाहे पाप। नानक बारक कछु ना लाग जाने, राखण को प्रमाई बाप। प्रभाती महला पंजवा चरण कमल सरन टेक, ऊच मूच बेअंत ठाकर सर्व ऊपर तुही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिदार, दैन हार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखन हार मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावे सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदियां महला पहला विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। लिफ्ट रही फन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दरड़ाया। ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पौ सागर तरे रहाओ। माया संच राजे हंकारी, माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी, बिन्ना मैं को साथ न संगी। ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सदगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सदगुर पेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रह लिवलाए। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। निकरवा सिमर पद पावे, तांदर सच सोभा पावे। गुर सेवा बिन भगत ना होई, अनेक जतन करे जे कोई। हमें मेरा सबदे खोई, निर्मल नाम वसै मन सोई। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द होर मोह गुबार। शब्दे नाम रखे और तार, शब्दे गत मत मुख द्वार। अवर नाही कर देखण हारो, साचा आप अनूपया पारो। राम नाम उत्तम गत होई, नन खोज लह जन कोई। प्रभाती महला पहला, माया मोहे सगल जग छाया। कामन दे काम लोबाया, सुत कंचन संहेत वधाया। सब किश अपना इकराम पराया, ऐसा जाप जपो जप माली। दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निदान तेरा अंत ना पाया, साज शब्द तुझ माहे समाया। आवा गौण तुदया प्रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर भेटे कोई न जानी। सगल सरोवर जो समाणी, आनंद रूप विटो कुरबाणी। पाओ भगत गुरमति पाए, हम मैं विचों शब्द जलाए। तावत रखे ठाकर हाए, सच्चा नाम मन वसाए। बिस्म विनोद रहे परमादी, गुरमत मान्या एक लिव लागी। देख निवारिया जल मैं आगी, सो बूझे होवे वड भागी। सतगुर सेवे परम चुकाए, अंदर जागे सच लिव लाए। एको जाने अवर ना कोए, सुखदाता सेवे निर्मल होए। सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संजम हो मैं मार। जीवन मुक्त जहां शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए। सुख दाता दुख मिटन हारा, अवर ना सूजिस बीजी कारा।
ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਹਰੇ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਹਾਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭਯੰਗਮ ਪਾਠੀ ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ ਬੂਡ ਮਰੈ ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਪਰ ਧੋਵੈ ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭ ਕਰਮਾ ਜਿਉਂ ਬਾਜੀ ਗਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ ਖਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ਰਹਾਓ ਮਾਇਆ ਤੰਦਾ ਤਾਵਣੀ ਦੁਰਮਤਕਾਰ ਬੇਕਾਰ ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦਾ ਬੂਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਰ ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਵਾਰ ਮੱਜਨ ਝੂਠਾ ਚੰਡਾਲਕਾ ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਝੂਠੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ ਝੂਠੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਰਨ ਹੈ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋਰ ਕਮਾਵਣਾ ਫਿੱਕਾ ਆਵੈ ਸਾਧ ਦੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁੱਚੀ ਐ ਵਿਖਵਾਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮ ਪੂਲੇ ਮਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਮਰੈ ਮਰ ਜਾਈ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਧਾਤ ਇਸਨੋਂ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ਸੋ ਸੇਵਹੋ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਕੈ ਤਿਸਨਾ ਆਰਿਆਪ ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਪੂਜ ਖੁਆਰ ਦੁਬਦਾ ਚੂਕੈ

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद राग जय जयवंती महला नावा राम सिमरो यह तेरे काज है माया को संग त्याग प्रभजू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने जो तन पछान काहे पर करतमान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिनस जह है तेरो गात छिन छिन कर गयो काल तैसे जात आज है जय जावंती महला नावा राम भज जन्म सिरात है कहो कहां बार बार समझत न क्यों गवार बिनसत नह लगे बार उरे समगात है रहाओ सगल परम डार दे गोविंद को नाम ले अंत बार संग तेरा।

बाद समन जाओ इस प्रेम की दम केहो होती साट, रावण होते सो रंक न जिन सिर दीने काट, प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग, सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम, मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए, जाप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब, मूसन मर्म ना जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम ना बेदेओ उर्ज्यो मिथ व्यवहार, कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल, जा को प्रेम सुआओ है चरण चित्व मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहू जाहे, लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल, कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार, मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम, कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार, कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ, कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए, कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजै गोबिंद, कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए, कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकीनो आदेश, कबीर सोई मारी है जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए, कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत, कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़े टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास, कबीर बांस बढ़ाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए, कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ, कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतकठा उठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए, कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हार जे नाही हर को नाओ, कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए, कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान, कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸਮੁਸ ਲਾਵੈ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਕਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀਂ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹੈ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ

आए। कबीर ऐसा सतगुरु जे मिलै तुठा करे पसाओ, मुग द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर नाम है शान ना शापरी, नाम है करनी गाओ, मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करहेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै, जे मुख निकसे राम, ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुत्रे, मानस राख्यो नाओ, चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर काले आया, पीसाए पीसाए, तै सह बात ना पूछिए कबो ना लाई पाए। कबीर जे दरियावत जाते हो, हटके नाही कोए, सोदर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरे ओ, गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा, तब उतर पर्यो हों फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे जै बिगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ, मुआ सब संसार, एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो, मोटी लागी खोर, काया हांडी काठ की ना उचरे बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हास दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए, गुण को मरिए रोए, अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत अपनो अद माज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे, मंत ना माने कोए, राम बियोगी ना जिये, जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध, तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहया जाए, एक जो साधु मोहे मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हौ ही भला, दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौबत अपनी दिन दस लिहो बजाए, नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदे मस करो, कलम करो बन राए, बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे, हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मिल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए, पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक, अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी, सुनो वीर मसान, लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो, उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जां को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओह चूले ओह चीरी है साकत संग ना हेर। कबीर पार पराई सिर चरे, चलो चाहे बाट, अपने पारे ना डरे आगे औकट काट।
ਕਬੀਰ ਬਰਕੀ ਦਾਦੀ ਲੱਕਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ, ਮਤ ਬਸ ਪਰੋ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ, ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੈ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੈ ਸ਼ੈ ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ। ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ, ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇਓ ਠਾਉਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ, ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੋ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਨਕੈ, ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਬੰਦੈ ਜਨਮੇ ਆਏ। ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਐ ਰਾਮ ਕੀ, ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ। ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ, ਕੇਸੋ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਮੀਤ, ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ, ਬੀਚੈ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਇ, ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋ, ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਹੈ ਕਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ, ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ, ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਕੀ ਪੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਨ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ, ਸਾਗਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਤੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਤਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਦਿਆ।

कबीर माए मुंडोते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे दमै चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तलै दुराए, प्रगट पै निदान सब जा पूछे धर्म राय। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै रात जगावन जाए, सरपन होए कै उतर जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै अहोई राख नार, गधी होए कै उतर पारस है मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी उपर खेलना ग्रहता ठाहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैये राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गोग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीसगी जग तो लंगे जाए। बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो सो जाई सैना, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चितारे पी चुगे चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक ज्यो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी ज्यो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसे उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतेओ जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे खसम कहो जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहट तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार।
ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਮਸਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ, ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬ ਹੈ ਕਰ, ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਬ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੈ ਕਾਲ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜਨਤਿਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕਉ, ਜਮ ਨਾ ਕਰੈ ਤਿਸਕਾਰ, ਜਿਨ ਇਹੋ ਜਮੁਆ ਸਿਰਜਿਆ, ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਕਸਤੂਰੀ ਪਇਆ, ਭਵਰ ਭਏ ਸਬਦਾਸ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੀ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਬੀਰ ਗਹਿ ਗਚ ਪਰਿਓ ਕੁਟੰਬ ਕੈ, ਕੰਠੈ ਰਹਿ ਗਿਓ ਰਾਮ, ਆਏ ਪਰੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ, ਬੀਚੈ ਤੂੰ ਮਾਤਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਗ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਅੱਛਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਗਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲਹਿ ਨਾਓ। ਕਬੀਰ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੈ, ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕਛ ਮਿਲਿਓ, ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਕਬੀਰ ਬੈਸਰੋ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੇਲੀ ਚਾਰ, ਬਾਹਰ ਕੰਚਨ ਬਾਰਹਾ, ਪਿੱਤਰ ਭਰੀ ਪੰਗਾਰ। ਕਬੀਰ ਰੋਣਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕਹੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਐਸਾ

कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट तहां कबीरै मटकिया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओड़ हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए बंजन हारे बाहरा कौडी बदलै जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है जहां झूठ तह पाप जहां लोभ तह काल है जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजीता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए मान मुनि मुनमर गरे मान सबे कौ खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही पोए मिल गया परया कले जे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक अंधे एक न लाग गई जो बस बजाइए फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार ताश पटंतर ना पुजै हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है क्यों हर चेरी कौ मान ओ मांग सवार बिखै कौ ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मांडे हाट जब ही पाइए पारखू तब हीरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नित अमरापुर बासा करो हर गया बहोर बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे ओ कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान तब कुल किसका लाज सी जब ले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रह निसंक जो जानु निर्दावे रह सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर ए दो अखर ना खिसे सो गह रहे हो कबीर। कबीर कोठी काठ की दै दिस लागी आग पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छाड़ै संतई जो कोटक मिलै असंत मलयागर भुजंगम बेड्यो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परया दिशा गई सब पूल ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देहे दिवस चार को पेखना अंत खेहे की खेहे। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देहे गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेहे। जह अन पौत है पै नहीं जह पौत है हर ना है कहो कबीर विचार कै संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए हमो जो बूजा बूजना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की लागत ले ओ सास।

चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा साई ना बैरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जा की दर साबत नहीं ता को कहां खुदाए। कबीर अल्लाह की कर बंदगी जे सिमरत दुख जाए दिल में साई प्रगटै बुझै बलंती नाए। कबीर जोर किए कबीर जोरी किए जुल्म है कहता नाव हलाल दफ्तर लेखा मांगिया तब होएगो कौन हवाल। कबीर खूब खाना खिचरी जा मैं अमृत लोन हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। कबीर गुर लागा तब जानिए मिटै मोह तन ताप हर सोग दाजे नहीं तब हर आपे आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार सोई राम सब कह है सोई कौतकार। कबीर राम है राम कहो कहबे माहे बबेक एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे ते कर मरहट सारखे पूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया प्राकृ जे शेक। कबीर निर्मल बूंदिया कास की पर गई भूम बेकार बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंदिया कास की लीनी पूम में लाए अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए साई मुझसे लर परिया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म।

मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसू के ना है, जिन एहो रचन रचाया तिसी मैं समाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा, चिंता पे आप कराए सी है, चिंत पे आपे दे, नानक सो सा लाही है जे सब ना सार करे। महला पंजवा, कबीर राम ना चेते ओ फिर या लालच माहे, पाप करंता मर गया औध पुनी खिन माहे। कबीर काया काची कारवी, केवल काची तात, साबत रखे ता राम पाज नाहे ता बिरठी बात। कबीर केसो केसो कुकिया, ना सोइए आसार, रात दिवस के कुकने कबहू के सुने पुकार। कबीर काया कजली बन पया, मन कुंचर मैं मंत, अंकस ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। कबीर राम रतन मुख कोथरी, पारखे आगे खोल, कोई आए मिले गो गाह की, ले गो में गो मोल। कबीर राम नाम जान्यो नहीं, पाल्यो कटक कुटंब, तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बंब। कबीर आखी केरे माटके, पल पल गई बिहाए, मन जंजाल ना छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तारवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद। कबीर ऐसा बीज बोए बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुभर फलंत। कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया होए ललाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना या कटकाट। कबीर एक कड़ी आदि करी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माछली सुरा पान, जो जो प्राणी खाहे, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबैर थातल जाहे। नीचे लोहिन कर रहो ले साजन कट माहे, सब रस खेलो पीसो किसी लिखावो नाहे। आठ जाम चौ सठ करी, तो निरखत रह जियो, नीचे लोहिन क्यों करो सब कट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसे, जी में बसे के पियो, जियो पियो बूझो नहीं कट में जियो के पियो। कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाहे, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारो बेदो माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए, कह कबीर गुर पली बुझाई कीटी होए कह खाए। कबीर जो तुहे तो साध ब्रह्म की, शीस काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तुहे तो साध प्रम की, पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। ढूंढत डोले अंध गत, अर चिंत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है बिन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कै करे आन की आस, ते नर दो जग जाहेंगे सत पाखे रविदास। कबीर जो ग्रहो करे ता धर्म कर,

राम जम पौ नित पाई, अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी, सुमत जल जानी जुगत, गुर अमरदास निज भगत है, देख दर्श पावो मुक्त। गुर अमरदास परसियै पहुं पातक बेनासै, गुर अमरदास परसियै से साधक आसासै, गुर अमरदास परसियै ध्यान लइयै पौ मुकहे, गुर अमरदास परसियै अपौ लब्बै गौ चुकहे। एक बिन दुगण जो तौ रहै, जा सुमंत्र मानवै लहै, जाल पा पदार्थ इतड़े, गुर अमरदास डिठै मिलै। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहे हो, ताते अंगद लहना प्रगटतास चरण लिव रहे हो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास, तास गुण कमण वखाणो, जो गुण अलाख्या गम तिने गुण अंत न जाणो। बोए थो विधाता निर्मयो, सब संगत कुल उदरण, गुर अमरदास कीर्त कहै त्राहे त्राहे तो पासरण। आप नारायण कलातार जग में परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। जय कहते हैं परपूर सब दीपक दीपायो, जे सिखै संग्रहयो तत हर चरण में लायो। नानक कुल निम्मल अवतरयो, अंगद लहणे संग हो, गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो। जप तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखै, शरण परै ते उबरै छोड़ जमपुर की लिखै। भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै, गुर गौ हर दरियाओ पलक डुबन त्यै तारै। नानक कुल निम्मल अवतरयो, गुण करतारै उचरै, गुर अमरदास जिन सेवयो तिन दुख दरिद्र पर हर परै। चित चितवो अरदास कहो पर कह पहि ना सकौ, सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हौ तकौ। तेरे हुकुम पवै निशान तव करो साहिब की सेवा, जब गुर देखै शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा। अगम अलख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो, गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिव रहो। पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत् स्यों तत् मिलावै, सच सच जानिए इक चित्तै लिवलावै। काम क्रोध वस करै पवन उडंत न तहावै, निरंकार कै वसै देश हुक्म बुझ विचार पावै। कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किश कियो, गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुर नानक निकट बसै बनवारी तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निध अपियो, हर नाम अखै निध चहो जुग, गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरन सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणंग, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पतत जे प्राणी, हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग वंश तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जाकी सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया जस जन कै, एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कौ, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविद वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणं, जिनो बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕ ਸਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰਨ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲੱਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਲ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾ ਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ

चरण कमल सदा सेओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गे अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनका मोह भया मन मद का। 84 लख जो ने उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुनारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बेचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन।

निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइए परमार्थ सतसंगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आद जिस कोए न जा।

पंजन गण समरथ तरन तारण प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं पवसागर पार उतारन को। संतत ही सतसंगत संग सो रंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कहो दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग कब होक को उपावे आत्म प्रगास को। वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जाको शिव मन गहे नात जात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे। देख दर्श पटक प्रम पजत दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत आलस मुह जो कुसम सुभासे। बिद मान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहत अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध न छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो एहो तथ। ताहे कहां परवाह कहूं की जा कै बसीस धरयो गुरहथ। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई। अपने आप ही पायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे असुर नर गण गंधर्व खो जंत फिरे। अब नासिया चाला जोनी संपाओ पुरखोत में अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन धन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो ही। गुर अमरदास करतार

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै सोई रामदास गुरबल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्र पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रकट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मन तुमली अगर प्रगट सुवास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख सरनाई। मोह मल विवस की आओ काम गह केस पछाड़े आओ क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान स्यों चाड़े आओ। जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सो मन्नै भव सागर बंदे आओ सिख तारे सो प्रसन्न। सिर आत पात

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया किव करी निवण ना जाए थणी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पी टहंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थणी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वन्याए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर स्यों आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नारक दुनिया कैसी होई साल

है करकै होए करे न गल्ला पिटन सिर खोहे न नाव लैन यार करन समाए नानक तन बलहार जाए रे मंडी गना डोली है सीधे मार्ग ताओ पाछे बग डरावनो आगे अगंत लाओ सह सह जियरा पर रहे हो मां कहो अवरना टंग नानक गुरमुख छुट्टी है हर प्रीतम स्यों संग बाग मरे मन मारी है जे सतगुर दिखिया होए आप पछाण हर मिलै बहुन न मरना होए की चढ़ाथ ना बुढ़ई एका नजर निहाल नानक गुरमुख उबरे गुर सरवर सच्ची पाल अगन मरै जल लोड़ लहो विण गुर ने जल नाहे जन्म मरै परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चलै सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल लाए मन तन मैला अवगुणी चिंज परी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साग स्यों ऐसी प्रीत है बुझो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुरथ तीर्थ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जा हर भगत ना पाओ पैंदा खांदा बाद है जा मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा या लाओ नानक नाम सलाहे तू हो रहा मैं आवो जाओ हैन विरले नाही कणे फैल फकड़ संसार नानक लगी तोर मर है जीवन नाही तान छोटा सेती जो मर है लगी सा प्रवान जिसन लाए तिस लगे लगी ता प्रवान फिरम पै कामना निकल है लाया तिन सुजान भांडा तो वै कौन जे कच्चा साजिया तातु पंजर लाए कूड़ा पाजिया भांडा आन ग्रास जात पावसी परम ज्योत जागाए वाजा वापसी मनो जे अंधे कूप कहया बिरद ना जाननी मन अंधे ऊंधे कवल दिसन खरे करूप एक कह जान कहया बुजन ते नरसुर स्वरूप एक ना नाद ना बेद ना गी रस रस कस ना जान अंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकर सार अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिन गुण गर्भ करंत सो ब्राह्मण जो बिंद ब्रह्म जप तप संजम कमावै कर्म सील संतोष का रखे धर्म बंधन तोड़े होवै मुक्त सोई ब्राह्मण पूजन जुगत खत्री सो जो कर्मा का सूर पुन दान का करे शरीर खेत पछाणे बीजै दान सो खत्री दरगै प्रवान लभ लोभ जे कूड़ कमावै अपना कीता आपे पावै तन नाथ पाए तनूर ज्यो बालन हड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर प्री सवाल सबनी कटी सौ वस है सहबन कट ना कोए नानक ते सुहागनी जिन्ना गुरमुख प्रगट होए जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ एत मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै कान ना कीजै नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए मरना जापे मूल आवै कितै थाए ज्ञानहीन अज्ञान पूजा अंधवर्तावा पाओ दूजा गुर बिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान सच बिन साखी मूलो ना बाकी माणू कल उठी चलै साध नाही अवे ही गलै राम चुरै दल मेल वै अंतर बल अधकार बंतर की सेना सेवी है मंत्र जो ज्यापार सीता लै गया दहसरो लक्ष्मण मुओ सराप नानक करता करन हार कर वेखे थापो थाप मन मैं चूरै रामचंद सीता लक्ष्मण जोग हनुमंतर यारा दया आया कर संजोग भूला दैत ना समझई तिन प्रभ किए काम नानक वे प्रवाह सो कीर्तना मिटई राम लाहौर सहर जहर कहर सवा पहर महला तीजा लाहौर सहर अमृतसर सिफती दा कार महला पहला
ਉਦੋ ਸਾਹਿ ਕਿਆ ਨਿਸਾਨੀ ਤੋਟਣਾ ਆਵੈ ਅੰਨੀ ਉਦੋ ਸੀ ਕਰੇਹੀ ਉੱਠੀ ਕੁੜੀ ਰੰਨੀ ਤੰਮੀ ਸੱਤੀ ਰੰਨੀ ਕਰੇ ਸਿਆ ਪਾਰ ਉਮਨ ਕੂੜੀ ਕੰਮੀ ਜੋ ਲੇਵੈ ਸੋ ਦੇਵੈ ਨਾਹੀ ਖੱਟੇ ਦਮ ਸਹੰਮੀ ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰੀਆ ਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ ਕਹਿ ਦੋਖੜੈ ਸੜਿਓ ਹੇ ਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਦੇਹੁਰੀ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾ ਜੈਸੇ ਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਜਿਤ ਡਿਠੈ ਤਨ ਪਰਫੜੈ ਚੜੈ ਚ ਵਗਣ ਮੰਨ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਏ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਰਤੀ ਹੀ ਪਤ ਹੋਏ ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਨਾਨਕ ਕਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਵਿਣ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇ ਔਰ ਆਏ ਨੋ ਮਤ

अणचारी का तान, फिटक फिटका कोड बदिया, सदा सदा अभिमान, पाहे ते जाहे विसर, नानका एक नाम, सब बुद्धि जाली है, एक रह तत् ज्ञान, माथे जो तुर लिखिया सो मेट न सकै कोए, नानक जो लिखिया सो वर्तदा, सो बूझै जिसनो नदर होए, जिनी नाम विसारिया कूड़ै लालच लग, तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग, जिन्ना वेलना तूंबड़ी माया ठगे ठग, मन मुख बन चलाई है ना मिली वगसग, आप पुलाए पुलिये आपे मेल मिलाए, नान गुरमुख छुट्टी है जे चले सतगुर पाए, साला ही साला हना पी सच्चा साला है, नानक सच्चा एक दार बीबा पर हरिया है, नानक जय जय मैं फेराऊं तै तै साचा सोए, जय देखा तै एक है गुरमुख प्रगट होए, दुख विसारण शब्द है जे मन वसाए कोए, गुर कृपा ते मन वसै कर्म प्राप्त होए, नानक हाँ हाँ करते खप मोए खून लख्या संख, सतगुर मिले सोबर है सच है शब्द अलंख, जिन्ना सतगुर एक मन सेवया तिन जन लागो पाए, गुर शब्दी हर मन वसै माया की भुख जाए, से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए, नानक होर पत साहियां कूड़ियां नाम रते पातशाह, ज्यो पुरख है कर भगति नार है तलोचै भगति पाए, बौरा सालने सवार दी खट रस मीठे पाए, त्यो बाणी भगत सलाह दे हर नाम चित लाए, मन तानो तानिया गै राखिया सिर वेचिया गुरिया गै जाए, पै भगति भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए, हर प्रवे प्रवाहो है कितखा दे तिपताए, सतगुर कह पाणे जो चले तिपता सह हर गुण गाए, तन तन कल जुग नानका जे चले सतगुर पाए, सतगुरु ना सेवयो शब्द ना रखियो उर तार, तिगत ना का जीव्या कित आए संसार, गुरमती पौ मन पवै ता हर रस लगै प्यार, नाव मिले तुर लिखिया जन नानक पार उतार, माया मोह जग परमिया कर्म से खबर ना होए, काम क्रोध मन हिर लया मन मुख अंधा लोए, ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागै सोए, नाम रतन प्रगासिया मन तन निर्मल होए, नाम ही नगटे फिरै बिन नामै बैरोए, नानक जो तुर करतै लिखिया सो मिट न सकै कोए, गुरमुखा हर तन खटिया गुर कै शब्द विचार, नाम पदार्थ पाया तुट भरे भंडार, हर गुरबाणी उचरै अंत ना पारा वार, नानक सब कारण करता करै वेखै सृजनहार, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथै उंगना भुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं जिथै आत्म राम प्रगास, काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए, एक उपजै के बिन सजाहे हुक्मे आवै जाए, जमन मरना चुकई रंग लगा दूजै पाए, बंदर बंद पवाईया न करना कछु ना जाए, जिनको कृपा धारिया न तिना सतगुर मिले आया आए, सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहि सुभाए, नानक भगति रत्या हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तल थाए ना पाई, पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे पाए खुवाई, जो बन जांदा नजर ना आवई जर पहुंचे मर जाई, पुत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई, सतगुर सेवे सो सुख पाए नाउ वसै मन आई, नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई, मन मुख नाम ना चेतनी बिन नामे दुख रोए, आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए, हो मैं अंतर मैल है शब्द ना काढ़ै तोए, नानक बिन नामे मैलिया मोए जन पदार्थ खोए, मन मुख बोले अंधले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत ना बुझनी शब्द ना करै प्रगास, ओन आया अपनी अंदर शुद्ध नहीं गुरबचन ना करै विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा हो सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेवन दे जन नानक ताका दास, माया भयंगम सर्प है जग घेरिया बिख माया।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जे तो कौ दियो ता स्यो नेहो ना कीन, कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जे नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को

कट कट में हरजू बसे संतन कहो पुकार, कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार। सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। उस्तत निंदया नाहे जेह कंचन लोहो समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। हरख सोग जां कह नहीं बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे।

कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। जे बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना, तेह नर माथे पाग। जे माया ममता तजी, सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हौ मैं तजी, करता राम पशान। कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पै नासन दुर्मत हरन, कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेह बा गुण गोबिंद पजहो, करन सुनो हर नाम। कहो नानक सुन रे मना, परह न जम कै ताम। जो प्राणी

और न लेत उधार, ज्यो सुपना अर्पेख ना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस्दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जलते बुद बुदा उपजय बिन सह नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कशु ना चेतई मद माया कै अंद, कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। जो सुख कौ चाहे सदा सरन राम की ले है, कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे है। माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत, नानक मूर्त चित्र ज्यों शाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई, चितवत रहे उठ गौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिन सैशन में मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत। जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिदहर पयो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तउ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है
जान ले हो रे मीत कह नानक।

जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है, परो आज कह काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कशु न होत उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को न निभयो साथ, कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पैर भी बेलावली पुनिया की गावे बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिशाख सुनावे बंगालम मदमाद वगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्टपुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशकिया लाप संग रागनी पांचौ थाप गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा परबल चंड कौशको भारा खौ खटियाओ पौरा नद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंचनार संग अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास कर आए चंद्रबिंब मंगलन सोहाए सरस बान औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी

संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कानरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंगन लावै बैरारी करनाटी तरी गवरी गावै आसावरी तेह पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यो पांचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्ट मेघ राग वै गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावै आसा गुनगुनी ऊचे सुरसू हो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचो चीनी बैरा तार गज तर के दारा जबली तर नट औ जल तारा पुन गावै शंकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सबै पुत्र रागन के अठारह दस बीस वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमरिया कर रावण दे आवै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहियां के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया की कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिआं ते अंतर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसी दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारिआं दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां प्यारिआं सचियारिआं दी कमाई का ध्यान तर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पत कारा खाप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाने दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिआं अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदिआं विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहे।

जी मान्यो प्रगट गुरा की देह, जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोए, ख्वार हो

रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह पख सार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद पहावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंधकोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवाण अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल।

द्वारे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावह इंदासन बैठे देवतियां दरनाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नरखी सरे

तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साद विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जोग जोग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन

विश्वास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पथ

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपार सब त्याव है सब त्याव है तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम हरे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संत हो जी

का भौ सबगवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे।

तेरी अनक तेरी अनक करह हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता, तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमृत शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आद पुरुख अपरंपर करता जी, तुझ जेवट अवर ना कोई, तू जोग

जिनका सतगुरु थापिया तिन मेट न सकै कोय। ऊना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाओ पूजिए नाओ मनिए, अखंड सदा सच सोए।

संत ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार, जब लग शब्द ना पे।

वसहिं, ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाओ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए, तित जीम दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावणी।

का नाम निदान, अंतर हर रसरव रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन कै बलिहारणे जिन्ना नामे लगा प्यार, सेई सुखिये चौं जुगी जिन्ना नाम अखुट अपार। गुर मिलिया नाम पाईए चूकै मोह प्यास, हर से ती मन रव रहया।

रते से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। धुर मस्तक

गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हर से पील बलाए, देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए, जिन गुरमुख हृदय शुद्ध है।

गुरमत हर लिव उबरे अलिप्त रहे शरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दरगाह मन्नी है।

तिन सतगुर चरण गहे सफल मूर्त सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार दुख संताप न लग गई जिस हर का नाम आधार बहां पकड़ गुर कांडिया सोई उतरिया पार थान सुहावा पवित्र।

सतगुरु स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिन कौ आप दयाल होए तिन उपजय मन ज्ञान। जिन कौ मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम ते आए सर्व सुखां सुख।

आप होवा मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पछान। भगत जना कौ राखदा अपनी कृपा तहार, हलत पलत मुख उजले साचे के गुणसार। आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागरो नानक सद बलिहार।

जपिए अमृत नाम जन्म मरण दुख काटिए लागे सहज ध्यान मेरे मन प्रभ शरणाई पाए हर दिन दूजा को नहीं एको नाम त्याए रहाओ कीमत कहन न जाइए सागर गुणी अथाह वडभागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाह कर सेवा सुख सागर सिर शाह पातशाह चरण

नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। प्रीत लगी तिस सच सिउ, मरै ना आवै जाय, ना वे छोड़िया बिछड़े, सब मह रहया।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिया निहचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाई निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराधिय दिन विसरहो नहीं रात जिन

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सतगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर भज सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जान सिमरी गोविंद जिन चाखया

दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख

रहाउ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात, जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात। पेयड़ै शहु सेव तू साहुरड़ै सुख वस, गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगै दुख।

तिसहत्या बहुमन मेरे सर्ब को आधार। गुर के चरण मन माहे त्याए, गुर के चरण मन मह त्याए, छोड़ सगल स्यान पा साज शब्द लिबलाए रहाओ। दुख क्लेश ना पो व्यापै गुर मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुर बिन तरयो ना कोए। देख दर्शन मन साधारे पाप सगले जाहे, हौ तिन कै बलिहार ने जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन बसै साच हर का नाउ, सेवड भागी नानका जिन्ना मन इहो पाओ। श्री राग महला पंजवां संच हर तन पूज सतगुर।

संसार। आप छोड़ सब होए रीणा जिस देव प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरे आपासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

आए करते हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

नाम सास गिरास न विसरै सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

जाय नानक गुर शरणागति मरै नहावै जाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड के तथाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लाह।

दर दरवेश रसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पूछना साजे पूछना टाहे पूछना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना

जाए, नित रवै सुहागणी साची नदर रजाए। साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार नारी।

फाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा व्यापार ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखै ठाए ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए कस कस

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाइए शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुण चार साच

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै के हे कर्म मिले सो पाइय किरत पया सिर दे रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चल

नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला। मनमुख भुलै भुलाइय फूली ठौर न काए। गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए। ज्ञान पदार्थ खोया।

बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ फुलिए देखी बहुत अभिमान तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान गुरबिन किन समझाइए मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाइए।

मस्तक सच निशान। बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़ै को, सुख जीवन तिस आखिया जिस गुरमुख वसिया सोए। नाम विहूणे क्या गणी जिस हर गुर दर्शना होए। ज्यों सुपने निस भुलिया जब लग निंद्रा होए, इउं सरपन कै बस जियड़ा अंतर हो मैं दोए। गुरमत होए विचारिय सुपना इहो जग लोए।

मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछताई। तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, आन दिन भगत कर

पंखी बिरख सुहावड़े उड है चौं दिस जाए जेता उड है दुख घणे नित दाज है तै दिल लाहे बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचै सहज सुभाए शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना छाऊ तिन्ना पास न बैसिए ओना कर ना गिराऊ कटिय है तै नित जालिय है ओना शब्द

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना।

भ्रम जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए, भगत वसल हर मन वसया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाहिए करम प्राप्त होए, श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ की ना आप भरम पुलाए। मनमुख कर्म करह नहीं बूझ है बिरथा जन्म गवाए, गुरबाणी इस जग मह चान।

गुर कै शब्द जीवत मरै गुरमुख भव जल तरण वड्डै भाग नाउ पाइयै गुरमत शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहया समाई इकना मनमुख शब्द न पावै।

जियो हो सतगुर विट हो कुमाया जिन भ्रम भुला मार्ग पाया नदर करे जे अपनी आपे लै रलाए जियो तू सबना माहे समाया तिन करतै आप लुकाया नानक गुरमुख प्रगट होया जां कौ जोत धरी करतार जियो आपे खसम निवाजया जियो पिंड दे साजया अपने सेवक की पैज रखिया दुए कर मस्तक धार जियो।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सरहंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

धन चित वै धन संच वै वणजारिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभाले जे होवै अंत सखाई एहो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया।

दरगाह सदा सुहेले। कर्म धरती शरीर जुग अंतर जो बोवै सो खात, कहो नानक भगत सोह है दरबारे मन मुख सदा पवात। श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुंद इयाणी पे अड़े क्यों कर हर दर्शन पिख है, हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौहरड़ै कम सिख है। सौहरड़ै कम सिख है गुरमुख हर हर सदा त्याय, सहियां विच फिरै सुहेली हर दरगाह बां लुडाए। लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे अड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै। व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लाधा। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा।

सतगुर तुठे लड़ली ने लाए नौ निद पाए नाउ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के।

जस नानक आप सुनियो हे संत। प्रेम ठगौरी पाए रिझाए, गोविंद मन मोहया जियो। संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो। हर कंठ लग सोहया, दोख सब जोहया। भगत लखियन कर बस पए, मन सब सुख बुठे। गोविंद तुठे, जन्म मरना सब मिट गए।

हर रंग रत हर त्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन बन जवा

सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द विचार जिहवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सतगुर सेवै।

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से तीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुनहु जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

पूजियै बिन सतगुर बूझ ना पाए। जब तब संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती।

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या अन दिन हर लिवतार। माया बंदी खसम की तिन अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़या हुक्म।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा।

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अफसर ना पछाणिया। उनमत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर अमृत माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया। पुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी। लोचन श्रम है बुद्ध बल नाठी।

प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करहो प्रतपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुर पूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुर

दिखा लिया हो सतगुर विटहो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै पिन पिन ना रलई किसै दी रलाइया सब एका जोत वरतै पिन पिन ना रलई किसै दी रलाइया।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए है, तू आपे मनमुख जन्म पवाए है। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया।

अगम अगोचर दे अंत अथाह। तेरी कीमत कहन न जाई जियो, खाक संतन की देहो प्यारे। आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आग हवै। नानक।

अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपौ मन सिमरत ठंडा थीमा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊंच नीच करे प्रतपाला नाम रसायन मन तृप्तायन।

मुख लागी दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अभागी सच घर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे कूरा जियो माज महला पंजवां विसर नाही ए वडदाते कर कृपा।

खहारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारिक तीखीर अगावै ज्यों निर धन धन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियारै दीपक परगासा भरता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे।

दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए

गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे। आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो। अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी।

सो सच स्वामी रिजक सब सकौ जीए जियो नाम जपत सर्व सुख पाई सब भौ बिनसै हर हर त्याई।

गोविंद प्रभ नानक सर्व समाहया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जित सच ध्याई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है।

जाप अलख अपेवा, काम क्रोध किलबिख गुर काटे, पूर्ण होई आसा जियो। पूर्ण भाग पय जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या।

पछाण है। हो बलिहारी संतन तेरे जिन काम क्रोध लोभ पीठा जियो। तू निर्वैर संत तेरे निर्मल जिन देखे सब उतर है कलमल। नान

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

गुर कै शब्द अधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावे

सच विहज है सच कमाव है सचो सच कमावणिया बिन राशि को वथ क्यों पाए मनमुख भूले लोक सभाए बिन

अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुना बनया मनमुख भूला दूजै भाए खुआए नाम न लेवै मरै बिख खाए आन

अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावणिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावणिया सो निर्मल जो शब्द सो है निर्मल नाम

मिलै ता चूकै फेरा, जां तुद भावै ता नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमति हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी।

शब्द पछाण गुरमुख मरे ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणे गुरमुख हर दर शोभा पाए गुरमुख विच हो आप गवाए आप तरह कुल सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणे गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूके पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावने गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावे शोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावने गुरमुख

वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद बखान है मोहे माया, अज्ञान मती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावणिया, अकथो कथिया शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो पावै, सच्चो सच रवै दिन राती।

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कहै कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख निह कर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिया।

मैं रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगन न पूहै तिन को रंग रत्ते गुण गावणिया, क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानणिया, जिसको तू प्रभु

मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडा।

मैं बनजारण राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए, भगत वश

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छिडाए रहाउ। लख चौरासी परम दे मन हठ आवे जाए, गुर का शब्द न चीन्यो फिर जोनी पाए। गुरमुख

तीजा। तेई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया। सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया। पेव कड़े गुण समलै सहुरे वास पाया। गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससुरै पेयै फिर वसै कहो कित विद पाइय। आप निरंजन अलख है आपे मेल आइय रहाओ। आपे ही प्रभ देह मत हर नाम त्याइय। वडभागी सतगुर मिलै वडभागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाइय। हो मैं दुविधा बिन सजाए सहजे सुख समाइय।

तार भौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुना।

बिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर भावै। कृष्ण बल भद्र गुर पग ला।

सतगुरा जब गुरु बोले हैं तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख जैसे हम सतगुर राख लिए छाए। तू गुर पिता तू है गुर माता।

ज्यों जननी सुत जन पालती राखै नदर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने धन धन गुरु गुर सतगुर पांधा।

नाम हर हर जग हर हर जग अवखद हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया तारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनहु प्रभ ठाकुर।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो।

सिर ऊपर ठाडो धर्म राय, मीठी कर कर बिखिया खाए। हो बंधो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर।

इस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस ओह अपनी लहै रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर न जाती, मुसन

सुख निदान हर अलख स्वामी। जी जंत तेरी शरणाई, नानक नाम मिले वड्याई। गौड़ी गुवारे री महला पंजवा। जी जुगत जाके है हाथ, सो सिमरहो अनाथ को नाथ।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

हों मैं निवरह गुर शब्द विचारे, चंचल मत त्यागे पंच संहारे। अंतर साच सहज कर आवहे, राजन जान परम गत पावहे। सच करनी गुर परम चुकावे, निर्भौ कै कर ताड़ी लावे। हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वस्या सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई।

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जिया मह एको रवै।

पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए निबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द।

रोता, आवत कौ जाता कहे जाते कौ आया, पर की कौ अपनी कहे अपनों नहीं पाया।

सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारेरी महला तीजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ मन मुख सूतक कबह न जाए।

नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवै सूतक जाए, मरै न जन्मै काल न खाए, शास्त्र सिमरत सोध देखो कोए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

हरे गुर कै शब्द पंच संहारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोह नत बाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई बहुते भेख करे भेख धारी अंतर तिशना फिरे अहंकारी आप न चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत भरम पुलहाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रत्ते सदा बैरागी गृह अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेव है से बड़भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

आए जम डंड सह है सदा दुख पाए जमुआ ना जो है हर की शरणाई हों मैं मार सच लिवलाई सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवै नाम सहज समावै। अमृत

तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करण हार पछाता तब इसनो नाही किशताता। जब इन अपनो बांधियो मोहा वह जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा। जब इन एको एकी बूझया तब ते इसनो सब किश सूझया। जब एहो तावे माया अर्थी न तृप्तावे न तिसलाथी। जब इसते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सतगुरु मिलियो मन मंदिर मह दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहर।

राम सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रस है अन पौ नगर तहां सद वस है तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।

नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सो ही जति, जो इस मारे तिस हो वै गति।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नितबाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन सर्बसना।

धारिया गुर निव निव लागौ पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक एक बलहारिया सब गुण किस ही ना है हर पूर पंडारिया चहु दिस जपिय नाउ सुख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलहारिया गुरका

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृत संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक।

या जुग मह एकह कौ आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्ध तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छड़ाना देवनहार मन है बिसराना तार हो कृपा जिस है गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही श्लोक

जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया।

गोविंद भजहो संत हैं की सिख लेहो प्रीत करहो सद एक स्यो या साचा असनेहो कारण करण करावनो सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो।

होत सब जाकी, तज अभिमान छुट्टै तेरी बाकी। रण दरगह तौसी जह पाई, जो गुरमुख राम नाम लिवलाई। रहत रहत रह जाहे।

अखर महत्र पवन प्रभ तहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर मुकत जुगत पह परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

सिमरन रिद सिद्ध नौ निध प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन दिन सह दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगाह मानी प्रभ कै सिमरन हुए सो पहला प्रभ कै सिमरन सुफल फला

से धनवंते, प्रभ कौ सिमरह से पतवंते, प्रभ कौ सिमरह से जन परवान, प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान, प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ कौ सिमरह से सर्व के राजे, प्रभ कौ सिमरह से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरह सदा।

प्रभु कौ सिमरहें से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन सुख बिहावे, प्रभु कौ सिमरहें तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरहें तिन निर्मल रीता।

अष्टपदी जह मात पिता सुत मीतना पहाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई जह महा भयान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जह मुश्किल होवे अत पहारी हर को नाम खिनमा है उदाहरी अनक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरुमुख नाम जपहो मन मेरे नानक पावहो सुख कनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै।

निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उदम मह उदम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जस सुन।

मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहै, मिथ्या हस्त पर दर्व कौ हिरहै, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद।

स्नेही जिह प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभुता कह। जिह प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास।

साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध कै संग कलूख तहरै, साध कै संग नरक पर हरै।